0: बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले भाई, आज तो नजारा आ गया भाई।
1: देखो ना जी, इतनी सोनी जन लेके आया।
0: लो भाई, अमली का ब्याह भी हो गया। वो तारी जेतो वालिया ला कोई शिंदे का नवा गाना, और शिंदे का लाई भाई, जिस बहुत बैजा बैजा हो जाए
1: मालको ला दें, पैसे नहीं लेने।
0: वाह वाह वाह वाह।